0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों

0: के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछु आमर आजिर वंदना कार्यक्रम। आज वंदनार प्रथम कंठशिल्पी अंजलि राय, कंठरे तांकर वैष्णव पाणी गीत रचना।

एही स्तवरे स्तुति करी सेवई प्रभु नरहरि तू प्रभु जगत कारण नृसिंह रूपी भगवान तुझे जगत जीव हरि तू अचु सर्व।

0: ପରେ ପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट
3: संशोधित

0: प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जीरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के

0: सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
2: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे

0: व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खान पान और जीवन शैली वजह है हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी बारीपदा प्रचार करुछु कार्यक्रम हेलो बारीपदा उपस्थापना अशोक कुमार दत्त तेबे आसंतु श्रोताबंधु शुणिबा कार्यक्रम हेलो बारीपदा।

0: आवाज नहीं, कोई आंखों से नहीं देख सकता प्यार के जज्बा को, कोई आंखों से नहीं देख सकता प्यार के जज्बा को, क्योंकि प्यार एहसास है, टाइम पास नहीं।
1: बढ़िया बढ़िया,
0: थैंक यू।
1: केमती अच्छा आप प्रथम कह दिन?
0: सर भलो अछि, बुलेक अछि एंड आपन कर टिकिन मास को सर गैप प्रति के फोन कर छी आ वो केर में जे लागो छी आज दिन में मोर संग होते जॉइन हे परिवार पुदारे
1: सर
0: बच्चा न होला एपटे भी सर बच्चा।

0: हेलो,
1: भाई नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मुनाबंडा कोटिला थाना सम्पर्क
0: अच्छा
1: कर
0: बहुत दिन पर आम कथा मन पड़ले
1: हाँ
0: आप।
1: बहुत दिन बाद यार के देखते भाई आपण जो टेलीफोन ना बड़े केतले रिंग हो जी केतले कटुची केतले लागुची केतले रिंग हो जी पुनी मजा मजा इनकम।
0: केमिति अछन्ति
1: आज्ञा
0: आपण?
1: हाँ मु तो सब बिंदास आशा अच्छे माँ शाला आशीर्वाद आपड़ बिंदास खुशी था माँ शाला आप मंदौड़े रखि था पाखापाखि एक वर्ष बाद आज आप कथा अच्छे बारिपदा केन्द्र बहुत खुश लगे।
0: बहुत
1: आज्ञा
0: बढ़िया कथा जहाँकि आपको फोन लगी। आउ केमिति आपणकर अंचल केमिति कौन सब आपण कौन करुछन्ते?
1: हाँ देखो आम अंचल तो हेल्ला जलसर अंचल जानते उपकूलवर्ती अंचल बात्या बना प्रवण अंचल तथापि चलती ठीक ठाक चलती बर्षा भी एवर्ष एभली बर्षा बोधे मुझे पहला केवे देखनी एवर्ष एभली वर्षा होती एभली वर्षा केवे नहीं कहना लोक एवर्ष एभली हईरा बर्षा नहीं कि आम
0: आज्ञा
1: 4 थर 5 थर लोक धान रोईले कितु 2 दिन बाद पुणी वर्षा आस पानी बुड़े दे पुणी तली खाई दे पुणी आगे इटी चलती धान रुआ प्रकार कि बहुत भलर अच्छा जलसर आसी क्या सुख दुख तो जीवन लग रही सब खुशी पाइबा सब दुख पाई आता किसी कारण नहीं चलती भल हालचाल सब भल भल अच्छे जलसर अंचलवासी
0: ଠିକ ଅଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁନା ଭାଇ, କଣ ଶୁଣେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲୋ ବାରିପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ?
1: ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଅଛି ଦିଲୱାଲେ ଦୁଲ୍ହନିଆ ଲେ ଯାଏଗା ଗୀତ ଅଛି ତୁଝେ ଦେଖା ତୋ ଜାନା ସନମ ଗୀତଟା ଦେଢ଼ ସତେ ପଠେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଙ୍କଜ ମିଶ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୋମପ୍ରଭାକର କେ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆଉ ଯେତେ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ
0: ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ,
1: ରହୁଛି ଭାଇ ନମସ୍କାର।
0: ନମସ୍କାର।

0: हाँ भाई क्या रे चलो हो
1: खोरा पानी पवन सब समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टा टिके फिटेई के कुहो
1: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलू उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेठे सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची होते सुविधा
1: जानिनो कि हो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनिकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना की कहजो
1: चलो
3: प्रचार खोलू कार्यक्रम हेलो बारीपदा उपस्थापन थिले अशोक कुमार दत्त आकाशवाणी बारीपदा आमर परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करुछु विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा दिल्लीरु अल्प समय मध्यरे
4: सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए
6: कहिए
7: सुनिए एक खुशखबरी
6: कहिए ना
7: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी

0: प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002462। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक में अब वक्त है कि छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें मीत ब्रदर्स जोनिता गांधी जुबिन नौटियाल की थी, कुमार के बोल थे सौरभ रॉय, मीत ब्रदर्स का संगीत था। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है, कहते हैं कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, यानी जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा तन और मन हो जाता है। हमारे जीवन में भोजन या जो भी हम खाते हैं सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि भोजन शरीर को स्वस्थ रखने और मन मस्तिष्क को बेहतर बनाने के लिए होता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जैसे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और साथ में पर्याप्त जल। पर्याप्त मात्रा में पानी उतना ही उपयोगी है जितना भोजन। पोषण केवल बच्चों के विकास के लिए नहीं होता, बल्कि हर उम्र के हर वर्ग के लिए जरूरी है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमें संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसका भी संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मसालेदार और केमिकल से युक्त भोजन हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। शुद्ध सात्विक आहार यानी घर का बना हुआ साफ सुथरे भोजन की ओर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर के पोषक तत्व दें शरीर को और बीमारियों से अपने आप को दूर रखें। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भारत फिल्म का गीत, आवाज थी अभिजीत श्रीवास्तव के, इरशाद कामिल के बोल थे अमाल मलिक का, संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था कपूर एंड सन्स फिल्म से, बादशाह फैजलपुरिया सुकृति की आवाजें थी, कुमार के बोल थे अमाल मलिक का संगीत था, और अभी आपने भारत फिल्म का गीत सुना। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

भाग मिल्खा भाग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सिद्धार्थ महादेवन की आवाजें थी और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था और शंकर एहसान लॉय की ये तर्ज आपने सुनी। आपको अब सुना रहे हैं अंधाधुन फिल्म का ये गीत, अमित त्रिवेदी की आवाज है, जयदीप साहनी के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत।

अंधाधुन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों 25 अगस्त से 9 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। अपने जीवन के बाद भी अगर किसी की दुनिया को रोशन करने का हम संकल्प लें तो यही है उद्देश्य नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का।

पलक मुछाल पुनीत अवस्थी की आवाजों में एक अंक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रभात कुमार ने इस गीत को लिखा था, पुनीत अवस्थी ने इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों, हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम किसी के लिए कुछ कर पाएं, किसी के काम आएं। हमारा छोटा सा फैसला किसी दूसरे की पूरी दुनिया रोशन कर दे, हमारी आंखें किसी की आंखों में खुशी ला दें। हमारे जाने के बाद यदि हमारी आंखें किसी और की आंखों में सपने दिखाएं, उम्मीद दिखाएं, खुशी लाएं। जिसने अपनी उम्मीद खो दी हो, जो उदास हो, तो इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है। इसी सोच को लोगों तक पहुंचाने और नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। तो चलिए हम खुद जागरूक बने और दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें। और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे और हरी शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना।

कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बम्बई यानी आज की मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।

0: साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा।
1: मुड़ मुड़।

एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज्ड इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कौन थी? जी, मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का संगीत आप

साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में

0: एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना।
1: ए बेबी, इधर आ गया।

लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाक्या आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए साहब, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट।

हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।

एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है।

दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की।

और अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का, जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा।

0: तो दोस्तों, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आपका अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया। एक संदेश उनके साथ होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री विपक्षी तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। बाद रहा है। भागलपुर में नदी का जल स्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। और खेलों में भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 सितंबर को इस श्रृंखला का पहला मैच नई दिल्ली खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो ये सब मेरे बचपन की बात है, जो किस्से कहानियां फिर बाद में सुनता हूँ कि क्या जलवे थे मेरे फादर के, कि
1: जी
0: मुझे एक मेरे फादर भी 2009 में गुजरे, लेकिन उनकी मैयत में कब्रिस्तान हमारा अपना है, तो घर से कब्रिस्तान तक जो मैयत है ऐसे ही कांधे कांधे ही गई, चल नहीं पाई,
1: ये
0: इतनी
1: वो
0: भीड़
1: इज्जत
0: थी।
1: है जो कमाई जाती है, वो प्यार है जो कमाया जाता
0: जी,
1: है।
0: तो वहाँ से शुरुआत स्कूल से हुई मेरी, ड्रामे वगैरह करता था स्कूल में, और इस तरफ जाने का कोई इरादा एज सच नहीं था, प्रोफेशन बनाने का इरादा तो बिल्कुल ही नहीं था। ये था कि भाई शौकिया तौर पे कभी थिएटर वेटर कर लिया करेंगे, और ऐसे ही मेरे घर वाले भी समझते थे कि भाई चलो शौक है, कर रहा है, अच्छी बात है, किसी ने कभी रोका टोका नहीं, खासतौर से मेरे घर वालों ने तो कभी कोई तंज भी नहीं कसा।
1: जी
0: तो वहाँ से शुरुआत हुई, और वहाँ से करते करते कॉलेज में आए, कॉलेज में भी किया, और मुंबई यूनिवर्सिटी में जब आया तो यहाँ भी किया। तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि इस लाइन में आने का बिल्कुल इरादा नहीं था। वो जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो जेईई का होता है,
1: जी का
0: उसमें जब नहीं हुआ मेरा, तब मैंने पलटी मारी। मैंने कहा अब हो गई पढ़ाई साइंसेस वगैरह की, अब जो मज़ा आता है जिसमें वो करते हैं, तब इस तरफ झुकाव हुआ। और इसी मकसद से ही मैं बॉम्बे आया, बीए कंप्लीट करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से मैंने स्कूलिंग की 3 से 12 तक,
1: जी
0: और फिर यह एएमयू से ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया मैंने।
1: जी
0: तो बॉम्बे आने का मकसद थिएटर करना था।
1: थिएटर था, और थिएटर जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो वो ज़रूर मिलती है। तो मुझे
0: जी
1: लगता है आपने जैसे जिक्र किया कि आप नसीरुद्दीन शाह जो है उनके बारे में पढ़ते थे, उनसे
0: जी
1: कभी मिलने की तमन्ना थी, और यहाँ पर शायद वही ख्वाब खींच कर लेकर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि उनका साथ मिला मुझे, और शुरुआती दौर में ही मिल गया मुझे, वरना उन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम होता है।
1: जी
0: तो मैंने भी शुरुआत उनके साथ वहीं से की, कि छोटे मोटे रोल क्राउड व्राउड में ऐसे वैसे करते करते, फिर उसके बाद बड़े रोल मिलना शुरू हुए।
1: जी
0: और मेरा सबसे अहम काम जो उनके साथ रहा है, वो दो प्रोडक्शंस जो मुझे ख़ास तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मंटो इस्मत हाजिर हैं, और उसके बाद एक था कथा कोलाज।
1: कथा कोलाज के बारे में काफी
0: जी
1: सुना है।
0: जी तो नसीर भाई तो एक लिहाज से मेरे उस्ताद रहे हैं, और काफ़ी कुछ सीखा है उनसे, और अभी भी सीख रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर न जाते हुए मैं कहूँगा कि इंसान के तौर पे और नज़रिए के तौर पे, उनके साथ अभी थिएटर तो नहीं करता मैं, 2009 के बाद छोड़ दिया था मैंने, लेकिन काफ़ी कुछ मुतासर करने वाली शख्सियत है वो।
1: बिल्कुल, यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं, तो आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत
0: अरे
1: सुनवाएं।
0: अगर बहुत पुराने दौर में जाएं तो मेरे ख्याल में मुगले आजम का वो गीत, प्यार किया तो डरना
1: प्यार
0: क्या।
1: किया तो डरना क्या,
0: जी
1: आइकॉनिक गीत।
0: जी
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं वो गीत।

0: बात करते लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल,
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहाँ आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नज़र किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हों, अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी, और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नज़रिए से, और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीज़ें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की, लोगों से काम मांगने का
0: जी।
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हों, चाहे वो एड्स हों, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहाँ देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूँगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज़ है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने करियर।
0: वो एक नींव है
1: जी,
0: जहाँ से सब चीजें शुरुआत होती
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं
1: जी। तो हाँ, वही एक शुरुआत, और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने हैं, वो सब थिएटर के जरिए बने हैं। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके
0: जी,
1: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही रास्ते खुले।
0: हाँ। अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
1: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की, एक लंबी फहरिस्त है
1: जी,
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी ज़रूरी है
1: जी।
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूँ मैं।
1: जी।
0: एक तो जहाँ से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से,
1: जी।
0: हम दिल दे चुके सनम,
1: रामलीला भी उनके साथ,
0: रामलीला भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर।
1: जी
0: बिल्कुल अलग किरदार,
1: जी।
0: और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही,
1: जी।
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों
1: जी।
0: का काम करने का तरीका एकदम अलग,
1: जी।
0: तो क्या डिफरेंस है और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए।
1: भंसाली जो हैं वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है, वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी।
0: बिल्कुल जी, तो लार्जर देन लाइफ,
1: लार्जर देन लाइफ
0: जी।
1: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में
0: जी।
1: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज़ में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज़ में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज़ बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूज़िक कंपोज भी

0: करते हैं अब तो,
1: बिल्कुल हाँ
0: और बाकी तमाम चीजें तो हैं ही, तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो 2 टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
1: अच्छा
0: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं।
1: जी
0: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं कि
1: जी
0: जो उनको वो चीज़ दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं हैं तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज़ भी है वो।
1: बिल्कुल
0: और अनुराग का जहाँ तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज़ डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है और वो रियलिज्म में ज़्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि अब वहाँ पर भी आपको अच्छे एक्टर की ज़रूरत पड़ेगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है, क्योंकि वो
1: स्पॉन्टेनियस
0: हाँ
1: स्पॉन्टेनियस
0: स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए। कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीज़ें भी मिल जाती हैं उसमें, कभी कभी अच्छी चीज़ें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फ़र्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है, और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की ज़रूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया,
0: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत,
1: श्रीकांत
0: श्रीकांत मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा
1: हाँ
0: सा टफ था,
1: जी
0: क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा, और क्या कहते हैं ऐसी शख्सियत
1: जी
0: जो बहुत ही अजीम बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है
1: हाँ
0: उसको,
1: हाँ
0: सुना
1: बिल्कुल
0: है देखा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर। मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
1: हाँ हाँ
0: एक तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे
1: बिल्कुल
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज़्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा।
1: जी
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और थोड़ा मुझे डराया भी उसने
1: अच्छा,
0: कि ये
1: ज्यादा
0: सही।
1: तैयारी के साथ
0: हाँ
1: उतरे
0: हाँ
1: आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के
1: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल सुनवाते हैं ये गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है।
1: जी
0: गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार। अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है,
1: बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो
1: जी
0: एपिसोड्स आएंगे।
1: जी दो चीज़ें देखिए उसमें, शुरू में मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया, ऐसा
1: घर घर
0: लगता
1: का
0: है
1: हिस्सा
0: हमारे
1: हो गया।
0: घर के
1: और मेरे
0: मेहमान हैं।
1: लिए भी एज ए कैरेक्टर
0: जी
1: अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई है, जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान। ये मेरी नॉर्मल जबान
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा। स
0: जी
1: श
0: हाँ
1: ज, और
0: बिल्कुल
1: मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की ज़िंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफ़ी समृद्ध परिवार से हूँ और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी,
0: जी
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल क्या
1: क्या
0: चुनौतियां
1: क्या
0: हैं,
1: चुनौतियां हैं। तो
0: बिल्कुल
1: उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पर जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहाँ से आता है। और किरदार के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहाँ से उठाई हुई चीज़ें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
1: जी, और आँख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें। वो ज़खीरा बनता है आपका, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी
0: जी,
1: आप वहाँ से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
0: और यहाँ पर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो

0: आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा कर रहे, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
1: बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि
0: जी

0: बुआ है कहने कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अबू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाई ये मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है। और मैं यही कहूँगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं। और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ द सी ऑफ लाइट्स, उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पे ख़त्म भी हो जाता था।
1: जी
0: तो वो एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
1: जी और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहाँ पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूँगा मैं, कोई कमाल की चीज़ आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूँगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा।
1: जी
0: अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फलां के बाप है कर लीजिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूँगा उसको,
1: जी
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी मैं करना ज़रूर चाहूँगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो चीज़ की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो ज़रूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतज़ार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक फिल्में हैं। सूरज बड़जत्या साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस किया है मैंने। और एक अभी फिल्म जो कर रहा हूँ वो जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज़ में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगी मुझे नहीं मालूम, वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा।
1: जी
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेज़ी में भी की है। तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेज़ी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज़ में से तो गुल्लक का सीज़न 6 आएगा अगले
1: उसका
0: साल।
1: इंतजार रहेगा
0: हाँ,
1: हमें।
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा जा
1: जी
0: रहा है वो।
1: जी
0: तो यही सब हैं, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आएँ। आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतजार
0: जरूर
1: रहेगा।
0: जरूर।
1: तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं। तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी।
1: जी
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाकया मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी।
0: जी,
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने

0: की थी, उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं।
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में, और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले,
1: जी
0: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन है कि डायरेक्टर से बात हो रही भी, वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक, क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं,
1: जी
0: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल हैं हमारे। उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने, और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: और लेजेंड हैं वो। तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है।
1: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
0: जी
1: वो बताना चाहेंगे, तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
0: जी
1: कभी कभी मजेदार भी होती है,
0: जी
1: उस
0: जी
1: बारे में कुछ बताइए।
0: हाँ, वो चोट मुझे आई थी। दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो 3 पहिए के रिक्शे वो होते हैं ना, सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहाँ पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहाँ से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए, मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मज़ा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज़ अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है।
1: एक और
0: हाँ, तो सर एक और करते हैं,
1: जी
0: मतलब मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है, कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया, तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
1: फिसल गया
0: फिसल गया, और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई
1: जी
0: तगड़ी। लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि वहाँ मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया। और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहाँ शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहाँ से, तो उसने तो देख लिया था शॉर्ट मॉनिटर में। आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया।
1: बेहोश हो गए
0: कुछ
1: जी
0: मेरे ख्याल 1 मिनट के लिए बेहोश रहा हूँगा मैं, फिर होश आया तो कह रहे सर, उसने मुझे फिर उसके बाद लिटाया वटाया, तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉर्ट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था ये, वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन्स हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक क्या हल्का सा एक लिम्प है लंग,
1: अच्छा,
0: हाँ कुछ कुछ एक सीन में
1: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
0: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
1: जी।
0: तो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं, वो सब मुझे होना था लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए,
1: हाँ
0: और वो ऐसे क्या कहते हैं सरिये निकले हैं और बांस वांस निकला हुआ है दुकानों का घरों का, और
1: बिल्कुल
0: जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर देखा, चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ उसको, पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सरिये वगैरह निकले हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं, ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि
1: बिल्कुल
0: आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में
1: बिल्कुल
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप।
1: बिल्कुल
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि नहीं, अरे ये वहां से रोको यार भाई, नहीं आ रहा है तो ठीक है, डील करो ना उससे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वही है।

0: सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है।
1: बिल्कुल, कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके
0: हाँ
1: से?
0: बेसिकली देखिए, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे।
1: जी
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो हैं, जो अल्फाज हैं, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में। तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज़ करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ।
1: जी
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है।
1: जी
0: और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी ज़बान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है, आपका
1: आजकल
0: अंदाज बदल
1: वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीज़ें, कुछ एक एक होता है ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे। और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से। तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना,
1: जी
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज़ की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी,
1: जी
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया। और फिर शूट करते टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा।
1: बिल्कुल दौड़ने लगा और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का।

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिलीजुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट नहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ही भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा। थिएटर में जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हो।
0: बिल्कुल।
1: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
0: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, इस बारे में कुछ बताएं।
1: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पाँव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफ़ी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी और बस थैंक यू कह के चले गए।
0: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना ज़्यादा ये नवाजा जाता है इस प्यार
1: जी से। जी जी, और कमाल की चीज़ है वो। वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
0: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
1: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो हैं मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है
0: जी।
1: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का
0: जी,
1: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूँ मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूँ कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया, और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस बात को समझना कि
0: हाँ,
1: कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और मस्तीखोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ और मैं सीरियस कम रहता हूँ लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रेस नहीं लेता मैं।

0: और स्ट्रेस देता भी नहीं। मैं बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से और इस तरीके से काम भी करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
1: बिल्कुल
0: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
1: जी
0: कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
1: जी
0: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से।
1: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
0: यही कहूँगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें,
1: जी
0: इसी में हम सबकी भलाई है।
1: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेलुलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझा पारियाशी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मीरा भाई का ये, मीरा बाई का लिखा ये पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ उषा मंगेशकर की आवाज में, फागुन फिल्म से। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जिसे लिखा जावेद अख्तर ने। ए आर रहमान का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे
2: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साधु एस तिवारी की आवाज, उन्हीं के बोल और उन्हीं का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: इला अरुण और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे वेल डन अब्बा फिल्म का गीत, इला अरुण और डैनियल जॉर्ज के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: रूपवती कमलावती भानुमती।

0: लव शव ते चिकन खुराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तिल बहार और रेणु जगोत्रा की आवाजें, शैली के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन,
1: उड़ जा काले कावा,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने की।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

आपकी पसंद इस एल्बम से मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे शेख आदम अबूवाला की लिखी गजल, अर्जन दासवानी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

लकी अली की आवाज में आप सुन रहे थे सिफर। इस एल्बम के गीत सईद असलम ने से लिखा, लकी अली का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कव्वाली, कल्लत खान कव्वाली और पार्टी की आवाज में।

अदनान साहब और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से ये कव्वाली आपने सुनी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में निदा फासली के बोल, एमएम क्रीम का संगीत है, सुर फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: रिश्ता कागज का फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। हेमंत कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ

0: के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सागर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज सागर, सागर तट की बातें और माझी नैया की बातें भी हो रही हैं, उन्हीं से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए

कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, सावन कुमार टाक के बोल और राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और वीजू शाह ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्लू। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के साथ साथियों की आवाजें, मयूरपुरी के बोल ए आर रहमान का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज हम इस कार्यक्रम में एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं इस कार्यक्रम में। तो आज की इबारत आपको बता दें, लाख कहे कोई धन को माया, ये तो सबके मन को भाया, रुपया हो या पैसा बाबू, इसके दम पर चलता जादू। कोई ये कहे कि उसे धन की चाह नहीं तो भला ये बात कोई मानेगा? पैसों और कमाई के मामले में तो सभी यही कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। वैसे तो कुछ ये भी कहते हैं कि पैसों की बारिश हो जाए और हम उसमें न सिर्फ भीगें बल्कि कुछ भर भी लाएं।

वैसे पैसे कमाने से ज्यादा उसको बचाना जरूरी लगता है और ये काम बड़ा मुश्किल है। कुछ तो पाई पाई बचाते हैं तो कुछ अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों की कमाई भी लुटाते हैं, कुछ इस कैश के लिए पसीना बहाते हैं तो कुछ बैठे बैठे ही सब कुछ पा जाते हैं। पैसों के मामले में क्या है आपकी राय? सोना चांदी और पैसे मन को लुभाएं या खुश हो जाते हैं अगर आपको मिल जाए एक कप चाय? तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द और इन पर कौन से गीत हम सुनवाएंगे। और आपने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं, बहुत से गीतों के बारे में भी आपने लिख भेजा है, तो देखते हैं आपके और हमारे गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के दौर में पैसा है तो सब कुछ है, पैसों से जिंदगी चलती है, लेकिन एक बात है, सब कुछ पैसे ही नहीं होते हैं, इज्जत भी बहुत बड़ी दौलत होती है। टन टन की सुनो झनकार, ये गीत इन्होंने लिखा है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो लिखी हैं, लेकिन ये सारी बातें तो हम करेंगे, उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का पहला गीत और आपको ये बताना है कि इसमें आवाजें किसकी हैं, और उसके बाद कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, यही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मनुष्य के सबसे कमजोर नब्ज को टटोलती और कुरेदती इबारत है, मोह माया में तृष्णाग्रस्त जीवन काल आर्थिक उपार्जन और संबलता प्राप्त में व्यतीत हो जाते हैं, उत्तरदायित्व बोझ तले मानसिक अवस्था पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में जरूरत और व्यसन के माध्यम आर्थिक मेरुदंड को सुधारने में ही गुजरता है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम अगर इनकी बात को संक्षेप में कहें तो ये कहना चाहते हैं कि धन उपार्जन में ही इंसान का जीवन आधा से ज्यादा व्यतीत होता है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अच्छी बात धन की ही की गई है आज, बहुत अच्छी बात, उसे केवल रुपए पैसे सोने चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं से ही आंका गया है, जबकि एक सर्वाधिक लोकप्रिय ही नहीं अपितु मूल्यवान धन कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से गणना इसकी नहीं की है, वो धन है संतोष धन, जो वैष्णव परंपरा का

द्योतक है। फिर इस दृष्टिकोण से ही तो कवियों ने गाया है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान रे, जब आवे संतोष धन बाबा सब धन धूरी समान रे। तो ये संतोष धन हम सब में समाये, ऐसे ही प्रयासों की अपेक्षा मनुष्य से की जाती रही, किंतु ऋण लेकर घी पीते रहने की आदत के चलते हम अपने यायावर रूप को भूल चार्वाक दर्शन के अनुयायी हो चले हैं। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर हर व्यक्ति की अनिवार्य जरूरत और आकर्षण का केंद्र है धन। धन का प्रभाव सार्वभौमिक है और जीवन की अधिकांश व्यवस्थाएं इसी की शक्ति पर टिकी है। पैसा कमाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक या कठिन है उसे संभालना और बचाना। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि पैसे को कमाना फिर भी एक बार आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाना और उचित तरह से खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करते हैं उचित तरह से पैसों को खर्च करने के लिए, हमें बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या आप संतोषी जीव हैं या आपको हमेशा लगता है कि अभी तो कुछ पैसे कम हैं और कमाई करने की ज़रूरत है। वहीं ये भी बताइए कि पहली बार आपको पैसे की कीमत कब समझ में आई थी और पहली कमाई क्या थी। ये सारी बातें तो करेंगे, लेकिन आपको पहले हम सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आपको बताना है किस फिल्म का है।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो तो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे साथी कह रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हालांकि इस गीत के बारे में देखते हैं ये गीत आपकी और हमारी लिस्ट में मैच करता है या नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि धन तो माया ही है जो हमारे ध्यान के पथ से भटकाते हुए संसार में बांधे रखने का कार्य करते हुए अपने गुणित अनुपात में बढ़ता ही जाता है। प्रक्रिया धन के वास्तविक स्वरूप के कारण ही संभव है, लेकिन अब देखना ये होता है कि हम धन के इस गुणित अनुपात को धन या ध्यान के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं क्या। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो है, पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को तो भारी कर सकती है, लेकिन आत्मा की खाली जगह को नहीं भर सकती। असली खुशी किसी तिजोरी की मोहताज नहीं, वो तो मन के किसी सुकून भरे कोने में रिश्तों की गर्मजोशी और एक सादे पल में चुपके से मुस्कुरा देती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मालिक इतना दीजिए, उन्होंने वो बात याद की है, मालिक माई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ध्यान में रखने वाली बात है कि इतना धन तो ज़रूर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए कि वो किसी के आदर सत्कार कर सके और ख़ुद भी खा सके, लेकिन बहुत ज़्यादा की बात सोचना, वहाँ हम ये सोच सकते हैं कि एक अलग तरह का लालच अपने मन में ना लाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं

अलग अलग बातें हमारे साथी हमें बता रहे हैं, और हमारे साथियों का कहना है कि आज की बात, बिना मनी के यानी कि बिना धन के तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को एक संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ये विश्व नारियल दिवस के मौके पर ये तो नारियल पानी पी रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन संपत्ति को ध्यान में रखकर जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो रिश्ते ज्यादा टिक नहीं पाते, जब तक दमड़ी तब तक ही है संगी साथी, तो इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो बस इतना ही कहेंगे, पैसा इतना जरूर हो कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, कभी किसी का काम भी आ सके, ज्यादा की चाहना रखी ही नहीं, ना ही फिर भी परमात्मा ने सब कुछ दिया है, असली धन दौलत तो परिवार होता है, दोस्त होते हैं और कुछ अपनों का साथ होता है, और सबसे बड़ा ईश्वर का हाथ, गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है, और एक सच्चा साथी विविध भारती। अब देखो ना, इसमें कोई बहुत दिन तक नहीं आता तो उसको याद करते हैं, और अगर नहीं सुन पाते तो बेचैनी से लगती है, पर आज कब से लग रहा था, हमने इबारत ही नहीं देखी, तो ये भी किसी दौलत से कम नहीं। वाकई ये दौलत भी, आप लोगों का जो ये प्यार है वो तो किसी भी दौलत से अनमोल है हमारे लिए, और आपका ये प्यार हमें मिलता ही रहता है, विविध भारती को मिलता रहता है पूरे वक्त। हमारे बहुत से साथी हैं वो अलग अलग बातें लिख रहे हैं, और हमारे एक साथी ने उस गीत को जो शुरुआत में हमने गीत सुनवाया था काला बाजार का, उसमें कहा कि गीता दत्त की आवाज़ तो उन्हें पहचान आ रही है, दूसरी आवाज़ पहचान नहीं आ रही, पर हमारे दूसरे साथियों ने तो ये जवाब दे दिया था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, सच्ची खुशी तो मन के भीतर ही कहीं सोई रह गई, मन भागता है उम्र भर जिस मृग तृष्णा के पीछे, वहां सुख नहीं बस इच्छाओं का एक अंतहीन सिसकन है। तो बातें तो बड़ी हो गई, लेकिन कभी कभी तो ऐसा मन में आता है कि लॉटरी लग जाए हमारी और ढेर सारे पैसे एक साथ हमारे पास आ जाएं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हमें बताइए, और क्या कभी आपको इस तरह से कोई धन मिला जब आपको लगा कि भाई ये तो बोनस हो गया, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, हमें बताइए। और बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

पैसे पैसे को जवानी मेरी तरह से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, सोते सोते उठ जाऊं बिस्तर से, कब जाएगी गरीबी मेरे घर से, कब जा...

0: चोरी चोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्या आपकी कभी लॉटरी लगी, तो ऐसा कोई कमेंट अब तक तो हमारे सामने नहीं आया। और अगर कभी लॉटरी लगी या कभी ऐसा लगा कि किसी तरह से बहुत सारे पैसे मिल जाएं, अगर मिल जाएं तो क्या करेंगे आप, ये भी हमें बताइएगा। ये तो ठीक है कि पैसों पर लालच नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन सोचने में क्या जाता है। अगर आप सोचें कि आपके हाथ लग जाए ढेर सारा पैसा, बहुत सारा नहीं, लाखों ना सही, हजारों में ही लग जाए मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप, जितना आप चाहते हैं कुछ अगर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, हमें बताइएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाह जाग जाती है, कभी कभी थोड़ा सा धन, थोड़ा सा अपनापन और ढेर सारा संतोष ही जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, लेकिन धन दौलत के बिना मान सम्मान सुख सुविधा नहीं होती है, इसलिए धन दौलत बहुत कमाना चाहिए, दौलत के पीछे इतना भी नहीं दौड़ना चाहिए कि खुशियों को दांव पर लगाना पड़े, दोनों का संतुलन जरूरी है। मन में हमेशा तो यही गीत चलते रहता है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, यानी कि ये एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है कि अगर हमें सोचें कि नहीं धन बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें कमाने की इस तरह से जरूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा उस पे हम संतोष करें, तो ये भी एक मुश्किल घड़ी पैदा कर सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार तो कमाने की कोशिश करना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी करें, और ऐसा ना करें कि हर वक्त धन के पीछे भागे।
1: अजना लिंक क्लिक करंतु नहीं, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु, SBI सचेतन रहंतु, सुरक्षित रहंतु।
2: प्रजर करुछु नारे महला।

0: स्पीशीज हैं, सो सर्वाइवल केवल आपका नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो हमने बीच में एनटीसीए ने भी हमने एक इक्वेशन करी थी कि टाइगर नॉट ओनली प्रोटेक्ट द टेरिटरी, दे प्रोटेक्ट द ट्रिब्यूटरी आल्सो, ये पूरा इकोसिस्टम का एक बैलेंस करने का विषय।
1: बेआईन जुआ खेल प्लाटफर्म पारिमैच एवं अन्यान्य केतोटी मामलें प्रवर्तन निर्देशालय ईडी आज विभिन्न राज्यर 12 स्थान में चढ़ाव कर अर्थ हेरफेर निरोधी आईन अधीन महाराष्ट्र 5 जातीय राजधानी दिल्ली अंचल 4 राजस्थान 2 और गुजरात 1 स्थान में यह चढ़ाव किया। चढ़ाव बेले कैश मैनेजमेंट सिस्टम एजेंटों माध्यम से बैटिंग मिलता अर्थ को नगद टंकार रूपांतरित कर पेमेंट बैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कार्यालय और बासभवन सामिल रही। सेमाने बेआईन भावे देश बाहर को अर्थ प्रेरण करथवा जणा पड़ीबा परे ईडी पक्षरु एही चढ़ाव करा जायछि। खेल खबर बैडमिंटन रे भारत रो किदांबी श्रीकांत आज चाइना ओपन टूर्नामेंट रो द्वितीय राउंड रे प्रवेश करिसेंती। सेंजेन ठारे अनुष्ठित पुरुष सिंगल्स प्राथमिक मैच रे श्रीकांत चाइनीज ताइपेई ची यु जेन को 21-16, 21-15 रे परास्त करिसेंती। अन्य एक पुरुष सिंगल्स मुकाबला रे कनाडा रो विक्टर लाइंग ठारु 14-21, 7-21 रे हारि जिबा परे लक्ष्य सेन टूर्नामेंट रु बाद पड़िसेंती। भारत रो मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला एवं तनिषा क्रिस्टो मध्य थाईलैंड जोड़ी को 21-8, 21-9 रे परास्त करि परवर्ती पर्याय को उन्नीत होइछेंती। मुख्य संवाद पुनि थरे नुआदिल्ली ठारे चलिथिबा जलशक्ति मंत्रालय सम्मेलनर उद्यापनी समारोह को आज संबोधन करिवे प्रधानमंत्री। साहाज्य को उद्धार सामग्री नहीं नेपाल रे पहुंचला प्रथम पंचम भारतीय विमान। बन्यार मृत्यु संख्या 1114 को वृद्धि। विश्वस्तरीय आह्वान सत्वे भारत अर्थनैतिक प्रदर्शन सुदृढ़ रही कहले विश्व बैंक अध्यक्ष। निशाद्रव्य सेवन ठारु दूरेई रहिबा लागि छात्र छात्री को परामर्श देले उपराष्ट्रपति। एवं चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंटर द्वितीय राउंड को उन्नीत हेले भारत किदांबी श्रीकांत।
2: This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address valedictory session of Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. India sends 5th aircraft carrying 5.5 tons of essential medicines and equipments to assist flood-ravaged Nepal. Death toll crosses 1,100. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds. India-Afghanistan Joint Working Group holds review meeting to strengthen bilateral trade and economic cooperation between the two countries. And in badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma advanced to the second round of China Open. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit is bringing together the centre and the states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit is focusing on 4 key areas covering timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability and Jal Jeevan Mission 2.0. The initiative seeks to promote shared responsibility for national goals and ensure that deliberations translate into measurable improvements in governance and service delivery. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 5th Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has departed for Nepal today. In a social media post, External Affairs Ministry Dr. S. Jaishankar said the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: Where India has learnings that can be shared elsewhere.
3: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली एनसीआर में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसू डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला से अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने

0: करने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपण माने कार्यक्रम सुनचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जोगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणि परिबे एही विज्ञापन परे।
2: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआदिल्ली ठारे आज जलशक्ति मंत्रणालय विभागीय सम्मेलनी उद्यापनी अधिवेशन में संबोधन करिबे। गतकाली ठारु आरंभ होइथिबा एही दुईदिनिया सम्मेलनी होउछि प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभाग स्तरीय शिखर सम्मेलनी प्रथम पर्याय। टीम इंडिया मनोभाव को सुदृढ़ करने सहयोगी संघीय व्यवस्था को अधिक सशक्त करने सहित केन्द्र और राज्य मध्य घनिष्ठ सहयोग द्वारा गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र उपर सामूहिक दायित्व वृद्धि कर समयानुवर्ती समाधान करने सम्मेलन उद्देश्य। यह शिखर सम्मेलन में चारोटी प्रमुख क्षेत्र उपर विशेष ध्यान दिया जाएगी। सेगुड़िक जल भित्तिभूमि प्रकल्पगुड़िकर समयानुवर्ती कार्यान्वयन।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, ओपी नैयर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, गीता दत्त, माफ कीजिएगा, ओपी नैयर का संगीत है, कमर जलालाबादी की बोल है, गीता दत्त की आवाज, और ये आपको सुनवा रहे हैं दूसरा एक गीत जिसमें मोहम्मद रफ़ी भी गीता दत्त के साथ, 12 o'clock फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।
1: भाई नारियल में बहुत गुण होते हैं। आप कुछ कह रही थी?
0: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। तो इंतजार है, शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें
0: जी। और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं और हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिखकर हमें भेजे,
1: वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई देखो, त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक

0: लगातार हैं, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी हैं हमारी सखियां, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको
1: वो
0: आके
1: बढ़
0: जो
1: जाती
0: ग्रेस
1: है।
0: आती है पहनने पर, वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, कैसी बनती है और
1: किस राज्य की है
0: किस राज्य की है।
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने चुना है प्रसन्नता, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, पर अगर हम प्रसन्नता को अपनाते हैं तो वो दुख के दिन भी बड़े आराम से निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये असली जीवन का आधार है प्रसन्नता।
1: जी
0: और हम श्रोताओं से चाहते हैं कि आप और संदेश हमें लिख के भेजिए, कुछ ऐसी बात भी लिख के भेजिए, क्योंकि आया तो है, कुछ कमेंट्स आए तो हैं, पर इंतज़ार है कुछ और उनके संदेशों का। और साथ में जानकारियां भी देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो
1: जी
0: फूड पैकेट्स पर जो जानकारी लिखी होती है, वो पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार को, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या चीज़ हम तैयार बाजार का अगर उन्हें खिला रहे हैं, तो उसमें क्या उनके खान पान में जा रहा है, ये चीज़ के लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है।
1: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है,
0: बिल्कुल।
1: उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है, और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है
0: जी,
1: वो सारे पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। और अभी क्या ज़रूरी है,
0: गीत बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: सुनते हैं गीत।

0: आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग-अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य हैं, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपना जो जीवन चलाते हैं।
0: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
1: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं। इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती है। और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
0: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, और
0: ये दिवस जो है ना,
1: जी
0: हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल, और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें, और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेज का संकल्प लेना चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू, पी लो नारियल पानी, 1 रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाइयाँ भी बनती हैं।
1: बिल्कुल, और ये जो मिठाई होती है खोपरा पाक, ये तो बेहद पसंद आती है
0: जी
1: कई घरों में, कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है, तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता है।
0: हम कितने समृद्ध है ना
1: जी
0: इस प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में से

0: श्रीफल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहाँ तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
0: और आप गाना सुन ले।
1: चलिए

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं
1: शायद, फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं। और साड़ी की गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना सखी? आप भी बताइएगा चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं?
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है, या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको?
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: तो चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियाँ बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं लगती है बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है, और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है, तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती है। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर सोबर डिजाइन सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
0: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं, और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है, और इसीलिए ये साड़ी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी पहन सकते हैं, साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई ख़ास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्यौहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कम्फर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल हरा पीला नीला गुलाबी सफ़ेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है, अब तो कथई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोफ जो हल्का जामुनी कलर होता है ना वो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत ये है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ये साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे सोनाली
0: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं।

0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं, और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
1: बिल्कुल। अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियां पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकर की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
0: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी।

0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
1: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मज़े में हमारे घर में खाते हैं। इसका पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहते हैं कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज उठता हूँ।
3: अब हम, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक।
2: चलिए,

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए, वो चुन रही थी। तो चलिए, आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, अक्सर होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये ने कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।
0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है, इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरी

0: अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है, दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय MRP हमें देखना जरूर चाहिए।
1: साथ ही उस पर दो चिन्ह होते हैं दीपा, खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है, इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
1: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी। बिल्कुल ताज़ा किस्सा बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ दो कुकीज़ के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नज़र कुकीज़ के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज़ बाय डेट 26 अगस्त 2026 ने एक्सपायर डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए। इतनी ये जागरूकता हर किसी को जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है, तो इससे उसकी गुणवत्ता का ज्ञान होता है। पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताजे पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा, बच्चे मानते नहीं है। तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
1: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगीरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगीरा को पूल रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था, सभी ने खाया। जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए। इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
0: हाँ, बहुत सही जानकारी, कितना सही जानकारी कि अगर आप व्रत में है और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर, इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है। और खाद्य पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनाली, हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य अवश्य जांचना चाहिए।
1: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसैचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए,
0: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर सोच समझकर उस चीज को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना। सकियो याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजाते हैं, तो नहीं गीत सुनकर के हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
0: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं ना, वो सचमुच जिंदा दिल होते हैं।
1: ये बात छोटी खुशी की बोल रही हो सोनाली, हमें पता है साड़ी लेकर ही रहोगी है ना। भाई साड़ी तो लेकर रहेगी, सोनाली को दिलवानी पड़ेगी साड़ी।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं, प्रसन्नता का अर्थ केवल किसी विशेष उपलब्धि या स्थिति तक पहुंचने में नहीं, देखिए श्रोता भी कह रहे हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल, और अपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है, और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए।
0: मेरे लिए तो नहीं कह रही आप।
1: शायद हो भी सकता है।
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है।

0: भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित होकर के हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं
0: और इनसे दूर ही भागते लोग।
1: हाँ, ऐसा भी होता है। और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है। भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है दो तीन बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
0: या फिर अपने पास रख लेना चाहिए।
1: हाँ, इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल
0: सही। साथी कहते हैं प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है।
1: बहुत सुंदर
0: जी।
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। ये तो हमारे मन के भीतर की भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते रहे।

0: दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में?
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ
0: जी। हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है। कहते हैं कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफ़ेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले। नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले। अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा। तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहें। धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा। इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है। लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे। मिश्रण को इस पर फैला दे। घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले। बहुत स्वादिष्ट लगता है।
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो इसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आँच पर चीनी घुलने तक पकाएं। और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें आप नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद। और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पर बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए
0: और खा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छौंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डाल के भून लीजिए। जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे, उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया।
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा और लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 बरस पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहाँ थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना।
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से।
1: जी।
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है।
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं,
2: से झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है, और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई।
1: जी।
2: और उस समय तो

0: खूब सारी कविताएं लिखी। बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी।
1: जी
0: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी। एक एक
1: शरद
0: दफा,
1: जी यानी आपके पतिदेव
0: जी
1: जी।
0: जी मेरे पतिदेव, एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ देखा है मैंने,
1: क्या बात है।
0: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है,
0: जी, इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को
1: लिखी थी।
0: समर्पित की थी। जी
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर। कौन सा
0: अरे
1: गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए
1: जी,
0: जाते
1: और
0: थे।
1: ऑर्डर देके भरवाते थे कि ये वाला
0: हाँ,
1: गाना
0: ऑर्डर
1: वो वाला
0: लिस्ट होती
1: गाना।
0: थी एक छोटे से, तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, और
1: जहां
0: तो
1: मिल
0: वो
1: गए
0: गाना सुनवा दीजिए।
1: जी।

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है, तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पे अपने आप से निकालना शुरू किया,
0: जी
1: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
0: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
1: जी
0: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: बताइए कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
1: जी, लेखन की शुरुआत में कहूँगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी, हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
0: जी
1: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
0: जी जी
1: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे,
0: जी
1: और जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
0: क्या बात है,
1: हाँ जी, तो
0: क्या काम
1: हमारे
0: करती थी?
1: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, मेरी श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूँ कि मेरी माँ नर्स रही, और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
0: क्या
1: है।
0: बात है भाई,
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये 4 पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
0: जी
1: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये 4, देवकी नंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
0: जी
1: ये पत्रिकाएं हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
0: जी
1: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
0: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
1: साप्ताहिक
0: थी।
1: हिंदुस्तान
0: जी
1: में, तो
0: बिल्कुल,
1: हम मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
0: आगे
1: क्या
0: क्या
1: हुआ।
0: होगा, क्या बात
1: तो
0: है।
1: मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ, वहां ये बीज पड़ा, और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहां जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहां है, वहां पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
0: जी
1: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी,

0: तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा।
1: जी
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया।
1: हम्म,
0: फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्री राम ताम्रकर सर,
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की कि, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे। तो बस वो एक कच्चा कच्चे, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहाँ चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहाँ से शुरू हो गई थी।
1: जी, तो या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है, तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार कौंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया संभाला वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी।
0: तो जब यादों को टटोलने लगी, अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी। मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है,
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहाँ से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियाँ भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है,
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह क्या बात है, बहुत
0: लकड़ी का
1: बढ़िया
0: पलना ऐसा होता है।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते
0: जी
1: हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल ज़िंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो,
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: यही।

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु,
1: जी
0: और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए। क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नज़र बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब वे मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नज़र बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो।

0: और फिर बात करते हैं।
1: हम्म।
0: जब उस विद्यार्थी ने वो नजरबट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियाँ उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नजरबट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नजरबट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नजरबट्टू यानी कि जो नज़र से बचा है वो, तो जो नजरबट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं, है
1: बिल्कुल,
0: ना,
1: गाड़ियों में
0: तो
1: लगे रहते
0: गाड़ियों
1: हैं,
0: में।
1: स्कूटर
0: ये
1: बाइक
0: बात
1: पे।
0: अलग है कि उनसे ब्रेक
1: हाँ
0: नहीं लगता लेकिन
1: बिल्कुल,
0: एक आस्था होती है
1: हाँ
0: इसलिए वो
1: हाँ
0: नजरबट्टू गाड़ी पर
1: हाँ
0: टंगाया
1: और
0: जाता है
1: खेतों
0: और
1: में किसान,
0: खेतों में
1: कृषक भाई भी
0: किसान।
1: लगाते हैं।
0: और जो एक और नजरबट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नजरबट्टू कहानी है उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नजरबट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च के की थीम को लेकर ही वो कहानी है
1: जी
0: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नजरबट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नजरबट्टू पर संपन्न हुआ है।
1: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
0: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
1: तो
0: जी
1: कैसे वहां जुड़ी आप।
0: मुझे ना ममता जी एक चीज़ लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
1: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
0: जी
1: किताबें तोहफे में देना,
0: हाँ
1: और सबको ये सीखना चाहिए
0: जी
1: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
0: हाँ
1: दें।
0: मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी, वो मैंने, माँ बेटी सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
1: क्या बात है।
0: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
1: जी
0: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
1: क्या बात है,
0: जी
1: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए, और
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद।
1: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को,
0: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
1: कहानी है।
0: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी हैं, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी,
0: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
1: क्या बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: वाह।
0: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
1: माँ कभी मंदिर नहीं
0: माँ
1: जाती
0: कभी
1: थी।
0: मंदिर नहीं जाती थी, बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
1: वाह क्या बात है।
0: जी
1: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह
0: जी जी
1: हैं। इनकी, इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी
0: नहीं,
1: है, और कितने
0: दरअसल
1: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
0: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
1: जी
0: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश

0: कविता संग्रह की बात करूं तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
1: जी
0: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
1: सारा
0: पूरा
1: आकाश,
0: दीजिए ना,
1: क्या
0: है
1: बात है।
0: ना, सारा आकाश।
1: हाँ
0: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी जी
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ
0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है।
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या मेरा
1: मेरा कुछ
0: कुछ
1: नहीं।
0: नहीं,
1: जी
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया।
1: वाह।
0: कहा जा, पूरा क्षितिज तेरा, जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी,
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
1: हाँ
0: अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी
1: बाकी
0: है
1: है
0: जिंदगी,
1: जी,
0: वो वाला सुनवा दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं ये
0: जी
1: गाना।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ। वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो ज़रूर पढ़ते हैं और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाज़त लेना पड़ती है। मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो।
0: जी
1: और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होती।
0: कि उनके
1: मेरा जो
0: पेज
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है। ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
0: बढ़िया
1: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
0: तो नोट कर
1: तो
0: लेते हैं।
1: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
0: वाह क्या बात है।
1: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ, क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
0: लिखने का वक्त नहीं
1: एकांत
0: मिलता।
1: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
0: जी तो ये
1: हूँ।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: जी
0: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
1: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके उनके यहाँ मिले, उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो येलो फ्रॉक वाली
0: अरे
1: लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
0: जी
1: से। तो जैसे उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का
0: अंदाजा नहीं था।
1: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
0: होली के दिन
1: होली के दिन प्रपोज किया, रंगे पूते थे बिल्कुल,
0: हाँ
1: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन
0: हाँ
1: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही।
0: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
1: जी
0: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
1: जी
0: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
1: जी
0: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
1: जी
0: शब्द साधिका सम्मान से आपको
1: जी
0: सम्मानित किया गया।
1: जी
0: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
1: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
0: जी
1: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
0: गौरव
1: की
0: की
1: बात
0: बात है
1: थी, गौरव
0: बिल्कुल।
1: की बात थी। यात्राओं के वृत्तांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
0: जी
1: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
0: बढ़िया।
1: तो जब हम यात्रा वृत्तांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृत्तांत लिखती हूँ,

0: तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितने भी कठिन यात्राएं हम कर चुके,
1: जी
0: जिसमें सिक्किम के लेह लद्दाख के ये सब तो थे ही, इसके अलावा जो हमारी एक प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है, मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
1: जी
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहाँ से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह, क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहाँ मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ये भाव वहाँ पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा डाइविंग?
0: स्कूबा डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है, और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैंने हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी जी
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफ़ेद और लाल रंग से डिज़ाइन बनाई जाती थी।
0: जी
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिज़ाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची होती
1: चाची,
0: थी।
1: काकी, मामी, बुआ जी,
0: दादी
1: मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडनो बनाई ले। मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी, खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहाँ पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था, तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
0: जी।
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड वाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और वाइट कलर से उस पर डिज़ाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज़्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। तो वो क्या था, बिजनेस फैमिली वाली है ना,
0: हाँ,
1: तो चूंकि शरद
0: तो
1: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज़ आते रहते हैं। तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
0: वाह, क्या बात है।
1: वो फिर लकड़ियाँ प्लाई लिया ऐसे करके। और आप यकीन मानिए कि मेरी जो पहली एग्जीबिशन थी उसमें सिर्फ 8 मांडने वापस घर आए, बाकी सारे बिक
0: बिक
1: गए।
0: गए,
1: जी।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इस तरह से अलग अलग होटल्स में वहाँ पर एग्जीबिशन होती थी, तो वो की। और उस वक्त तो सबको बना बना के गिफ्ट में भी यही दे दिया, कभी किताब कभी मांडना, ऐसा
0: जी
1: हस्तलिखित या हाथ की चीज़ की वैल्यू अलग होती है, उसके वो
0: बिल्कुल।
1: अनमोल होती है दरअसल।
0: अब लघु कथाओं की बात करते हैं। लघु
1: जी
0: कथाएं भी आपने लिखी हैं और
1: जी
0: संग्रह आए,
1: जी
0: कुल कितने लघु कथाओं के संग्रह आए, और किसी लघु कथा का जिक्र कीजिए यहाँ पर।
1: जी मेरे पहला लघु कथा संग्रह था मेरा जलतरंग, दूसरा था बीजू का, तीसरा था 99 का फेर, और जो चौथा लघु कथा संग्रह है मेरा वो है गोद भराई, और वो मैंने मालवी में लिखा है। मतलब मालवी हमारे यहाँ की बोली है,
0: जी।
1: मैं चूंकि हिंदी लिखती हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
0: जी।
1: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है। और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
0: अच्छा।
1: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मुझे लगा 60 बरस हुए तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: काफ़ी समय से
0: वाह।
1: लिख रही थी और इस तरह से वो, तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
0: बढ़िया।
1: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊँ मैं।
0: जी
1: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
0: जी
1: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही

0: उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन,
1: जी
0: अकेलापन कहाँ। उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए। उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई,
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके अंत में एक पंच होता है,
1: जी जी जी बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
0: जी
1: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं।
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
1: जी
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी। लेकिन अब खुलापन भी आ गया है और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है। मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ
1: जी
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को मतलब, संघर्ष अधिक करना पड़ता है।
1: जी
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल। हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते, है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
1: जी
0: अब नवजात शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़ छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी।
1: ओ
0: मतलब देखिए
1: हाँ
0: समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
1: क्यों
0: फेंका।
1: फीका।
0: तो ये बीज हो गया, अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपने एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ, ऊपर
1: अच्छा
0: से निकल जा भाई,
1: हाँ
0: तेरे को जल्दी
1: जल्दी
0: से।
1: है तो
0: लेकिन वहां उस उन 39 सेकंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
1: क्या बात
0: है ना।
1: है।

0: इस तरह से विषय कब आ जाते हैं? और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास। और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी जी।
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी।
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी।
1: वाह।
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
1: कविता
0: सुनाती हूँ। उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन, अब तो विदा की बेला आई है। बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है। जीते जी जो मिल ना पाए, कांधे सारे आज मिले हैं। चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं। जीवन भर जो इर्द गिर्द रही, उसी काष्ट की अर्थी सजी है। नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काट की किताब से ली है
1: जी।
0: वह लकड़ी की खिड़की, शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने हवा के साथ, कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी।
0: जी,
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: मुझे भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा। पिटारा, पिटारा।

0: संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
2: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
4: चिट्ठी न कोई संदेश
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं बस वही एक चेहरा नजर आता है। इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जी चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

किसे पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा। कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

चांद के पार चलो। कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था, राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झर जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, AI और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और NR प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहाँ कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहाँ के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना

0: चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों,
3: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
4: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
3: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
5: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
6: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारने जो है।
5: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
6: यस।
4: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
4: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
7: सू
5: जी,
7: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ।
7: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
7: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
4: वो धीरे

0: उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
1: 15, 14
0: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
1: 13, 12, 11 ओह
0: जॉन्सी,
1: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
1: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ। सू
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
1: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो? 6, now it's 6, 5, 4 ओह
0: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
1: Only 4
0: मेरी तरफ देखो
1: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
1: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
0: हाँ
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। सू,
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉन्सी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
3: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,

0: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बीयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई जॉनसी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉनसी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉनसी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉनसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉनसी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉनसी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ
3: हाँ,
4: मैंने देखा, मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
2: हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
0: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
4: ये लो कॉफी पियो।
3: थैंक यू।

0: जॉनसी, एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
0: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बेरमन।
1: ओह गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
1: ओह,
0: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस।
0: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग
6: ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟୋଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NCERT ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭକ୍ତିଗୀତର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବାସ ଦାସ, ଗୀତ ରଚନା ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳ।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

ଅଛି ତୁମ ବାହୁରେ ମୁଁ ଏକ ତୁମେ ଏକ ମୁଁ ଏକ ତୁମେ ଏକ।

ଦିନ ପାଖରେ ବାହାଘର ଘର ପକା ମୁଁ ଏକ ତମେ ଏକ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए

0: धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेबर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेबर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Build for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट

0: सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंगपिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
3: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पाठक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं। इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जांच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जाँच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता

0: संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Wever to arrive in New Delhi tonight on a 3-day visit to India. Talks on trade, defence, technology, energy and connectivity high on agenda. Heavy to very heavy rainfall likely in East Madhya Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Vidarbh and West Uttar Pradesh tomorrow. And India to stage inaugural Women's Champions Trophy in 2027 after Sri Lanka dropped as hosts. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering the fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rock near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने। शब्द रचना SH बिहारी की, धुन है OP नैयर की।

आइए अब आपको सुनवाते हैं पलकों की छांव में इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गुलजार की शब्द रचना और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है गुमनाम फिल्म से, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे और हरी शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना।

कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बंबई यानी आज की मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।

0: साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा।
1: मुड़ मुड़ के

एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कौन थी? जी, मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का संगीत आप खुद

0: साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना।
1: इधर आ गया

लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाक्या आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से इंस्पायर्ड होकर साधना के बालों को एक नया लुक दिलवाया। अब देखिए साहब, वो लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लड़कियां उसकी कॉपी करती हैं और वो लुक कहलाता है साधना कट।

हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।

हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देव आनंद पर पिक्चराइज हुआ, कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है।

0: दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम।
1: सुनिए

शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा है।

0: तो दोस्तों, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है, जबकि 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए

0: योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश बाग चंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का यह टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା ଶୈଳୀ ରାତ 6:05 ସାନ୍ତାଳି ଆଖଡ଼ା ଶୁଣିବେ 7:25, ଗୀତାଞ୍ଜଳି 8:15, ଦିନ 12:00 ଶୁଣିବେ ଝୁମର ଗୀତ। ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶିଳ୍ପୀ ସାଜନ କୁମାର ବଳ ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଭକ୍ତି ଗୀତ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ 6:15। ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ରାତି 7:00। ଏ ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃ 5:55। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରାତ୍ରୀ ସହ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦୀ।